कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक उसी।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख काल वड़ कमाए संख पापी पाप असंख मूड़े आर करे फिराए संख मलेच मार पाए असंख निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जाना के जो तुम पावे सही फल कर सदा सलामत संत नाम संत नाम राम राम संत लो संत कहें सिर्फ

अंत लई छिड़ाया इको अंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जा हो करी न होई बलिहारी कुदरत।

जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

अग कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ।

गावै मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल।

सोपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी।

तेरे भगत सुलाहन तुझ जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करह हर पूजा जी तप तप है जप है।

जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाऊ सब तुझ ही माही

हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो।

दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो।

स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपाव

काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर।

नित नित रख उर तारू, तम संसार चरण लग तरिये, सब नानक ब्रह्म पसारू। श्लोक महला पंजवां।

सच्चा अमर अमर वर्ताया अशाल अशेद अपेद है भगत वचल होए आप छलाया महमा मित मिर जादलन परमित पारा वार ना पाया रह रासी रह रास है पैरी पै जग पैरी पाया गुरमुख सुख सुख फल अमर पद अमृत बिरख अमृत फल लाया गुरु चेला चेला गुरु पुरखों पुरख उपाय समाया वर्तमान होए भी विश्वे होए एक ही सहज कर आया सच्चा अमर अमर वरताया हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक को हर बख्शला मेरे स्वामी

जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालू सतगुरु जी ने अपार कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाशमान हो करके सतगुरां ने दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन, उटान कोट शुक्र है। पावन पवित्र श्री मुखवाक आप जी ने सरवण कीते हन, जो अज सतगुरां ने तख्तां ते विराजमान हो करके प्रदान कीते हन। जैत सरी की वार, जो पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव दातार जी दे श्री मुख तो उचारण कीती गई है, उस वार विचों पावन अंग 707 अते 8 उपर अज दा ए पावन पवित्र श्री मुख वाक दर्ज है। पावन दो श्लोक अते एक पौड़ी सतगुरु दतार पिता महाराज ने हुक्म रूप विच बख्शिश कीती है। यदा भाव है कि जे प्राणी इस संसार सारी धरती दे खंडा नू जित लवे, सारी धरती ते उदा राज प्रभाव होवे, अते धरती तो वद के स्वर्ग विच उदा वासा होवे, स्वर्ग लोक नू भी उन्हें जित के अपने कब्जे विच कीता होवे, धरती उदे कब्जे विच होवे, इतना कुछ होण दे बावजूद जे उन्हूं वाहिगुरु चेते नहीं, परमात्मा की रहमत उहदे उपर नहीं, तां उह प्राणी संसार जगत का एडा वड्डा विजेता होण दे बावजूद भी अंदरों इतना तौखले नाल भरिया दुखी हुंदा है, भयभीत हुंदा है। मानो कोई रात का समा होवे, तिबियाबाण जंगल विच्चों गुजरदा होवे, उहदे मन की जो मनोदशा हुंदी है, संसार विच वाहिगुरु नूं भुला के जिउण वाला बंदा कितने भी पदार्थां दा मालक क्यों ना होवे, कितने भी खेडां तमाशियां मन परचावियां दे साधनां विच लगा होवे, परदाता जी कहिंदे ओह मनुख जिवें कोई कोड़ी दुखी हुंदा है, जिवें किसे मनुख दा नरक विच वासा हुंदा, उहनूं दुख लगदा है। इउं वाहिगुरु परमात्मा परमेश्वर नूं ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਆਬਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜਨ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।

नम है, सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव नम है, अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, सिमरौ जास

0: उन संग मोहे उदारो।
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम,
0: भगत जना के मन विश्राम रहा।
1: प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसे,
0: कै सिमरन दुख जम न से।
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरे,
0: कै सिमरन दुश्मन डरे।
1: प्रभ सिमरत कछ विघ्न न लागे,
0: कै सिमरन अंधन जागे।
1: प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापे,
0: कै सिमरन दुख न संताप।

0: प्रभ के सिमरन नहीं चले आसन,
1: प्रभ के सिमरन कमल बेगासन,
0: प्रभ के सिमरन अनहद चुनका हार,
1: प्रभ सिमरन का अंत न पार,
0: सिमरह से जन जिन को प्रभ मया,
1: नानक तिन जन सरनी पया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग भेद उपाए,
0: हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते,
1: हर सिमरन नीच चौह कुंत जाते,
0: हर सिमरन धारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन कियो सगल।

0: हर को नाम किन माहे उधारी, हर को नाम कोट पाप पर हरे,
1: गुरमुख नाम जप मन मेरे,
0: नानक पावो सुख कन्हे,
1: सृष्ट को राजा दुखिया,
0: हर का नाम जपत होए सुखिया।

0: साध जना की सरनी परे
1: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
0: नानक ताके बल बल जासा
1: सगल पुरख मह पुरख प्रधान
0: साध संग जाका मिटे अभिमान
1: आपस को जो जाने नीचा
0: सो गणिये सब ते ऊंचा
1: जाका मन होए सगल की रीना
0: हर हर नाम चिन कट कट चीना
1: मन अपने ते बुरा मिटाना
0: देखे सगल श्रेष्ठ साजना
1: सुख दुख

0: रतन त्याग कौटी संग रचे
1: साथ छोड़ झूठ संग मचे
0: जो चढ़ना सो अस्थिर कर माने
1: जो होवन सो दूर पर आने
0: छोड़ जाए किसका श्रम करे
1: संग सहाय किस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तो
1: प्रीत बसंग संगोए
0: अंधकूप में

0: संग माया पेख हस्ता
1: मिथ्या त्रोमो मान
0: मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान
1: असर भगत साध की शरण
0: नानक जप जप जीव हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है
1: मिथ्या नेत्र भेगत पर त्रया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद
1: मिथ्या चरण पर विकार को तावे।

0: सिमरत परम गत पावे।
1: जे प्रसाद बसह सुख मंदर,
0: तिसे त्याहि सदा मन अंदर।
1: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना,
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना।
1: जे प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग।
1: जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे,
0: तिसे त्यागत अवर लुभावे।
1: जे प्रसाद सुख सहज सोई जय,
0: मन आठ पैर ताका जस गावी जय।
1: प्रसाद तुझ सबको मान,
0: मुखता को जस रसन बखाने।
1: प्रसाद तेरु रहता धर्म,
0: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
1: प्रभु जी जपत दरगह मान पावे,
0: नानक पद से ती कर जावे।
1: प्रसाद आरोग कंचन देही,
0: निव लावु तिस राम स्नेही।
1: प्रसाद तेरा उल्ला रहत,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके,
0: मान सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके।
1: प्रसाद तुझको न पहुँचे,
0: मन साथ साथ सिमर हो प्रभु ऊचे।
1: प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
0: नानक ताकी भगत करे।
1: प्रसाद आप उखन पहरी जय,
0: मन के सिमरत क्यों आलस की जय।
1: प्रसाद अस्व हस्त असवारी,
0: मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी।
1: प्रसाद बाग मिलख तना,
0: राख करो प्रभु अपने मना।
1: जिन तेरी मनवंत बनाई,
0: उठत बैठत सत सहत्याई।
1: सहत्याई जो

0: रहु सदा अनूप
1: जय प्रसाद तेरी की जात
0: तो प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है
0: गुरु प्रसाद नानक जस कह
1: जय प्रसाद सुनह करन नाद
0: जय प्रसाद पिक है विस्माद
1: जय प्रसाद बोल है अमृत रसना
0: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
1: जय प्रसाद हस

0: पार ब्रह्म साध हृद बसे साध के संग सुनो हर नाऊ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मंति बिसरे
1: साध संग सर्प

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन भाई,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कत्या ना जाए दाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता।

0: निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक अपर सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नहीं रसना परस
0: मन में प्रीत निरंजन दर्श
1: पारत्रय रूप न पिख नेत्र
0: साध की टहल संसंग हित
1: करन न सुने कहू की निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: गुर प्रसाद विखया पर
0: मन की बासना मन ते टरे
1: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
0: नानकूट मते को ऐसा परस
1: मैं सुनो।

0: सर्व
1: नानकुश पंडित को सदा आदेश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
1: चौवरना में जपै को नाम
0: जो जो जपै तिसकी गत होए
1: सा संग पावे जन कोए
0: कर कृपा अंतर उर तारे
1: बस प्रेत मुक्त पात्र को तारे
0: सर्व रोग का अवगत नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: काहू जुगत कितए न पाइए धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन भार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सतराम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: दास दसंतन पाए किन पाया
0: सदा निकट निकट हर जान
1: तो दास दर गए परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: किस दास को सब सूझी पर

0: जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
1: जैसा अमृत तैसी बिखाटी,
0: जैसा मान तैसा अभिमान,
1: जैसा रंक तैसा राजान,
0: जो वरताए साई जोगत,
1: नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: जित जित घर रखे तैसा तिन नाओ,
0: आपे कर्ण करावन जोग,
1: कृपा वैसोई फुन होग,
0: पसरे आप होए अनंत तरंग।

0: चलो चलो कुष्ट करे अनेक जन अंत न पारा नानक रचना प्रभु रचि बहुत
1: अनक प्रकार
0: अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी
2: कई कोट चार बिहारी
0: कई कोट पै तीर्थ।

0: तमन को
1: कई कोट पर दर्भ को ही रहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रमाहे
0: कई कोट पर देश प्रमाहे
1: जित जित लावु तित तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प पाए
0: कई कोट पात्र बिरखन बजाए
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर
0: कई कोट देश भू मंडल
1: कई कोट ससियर सूर नखियत्तर
0: कई कोट देव दानविंद्र से छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत तार
0: जिस पावे सारे
1: कई कोट राजस्थान सातक
0: कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र
1: कई कोट कीर्तन समुद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत्र
1: कई कोट किए चिर जीवे
0: कई कोट गिरी मेर सुवंती वे
1: कई कोट जकी नर पिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाश
1: अब ते नीरे सब रूते दूर
0: नानक आप रुप त्रिया भरपूर।

0: कई कोट दर्शन प्रप्यास
1: तिनको मिलियो प्रभु नाथ
0: कई कोट मांगे सत्संग
1: पार बम तिन लागा रंग
0: जिनको हुए आप सुप्रसन्न
1: नानक ते जन सदा तन तन।

0: नान गर्भ गले हस्तरी
1: जिसके अंतराज महान
0: हो नर्क पाती होवत स्वान
1: जो जन में जो बनवंत
0: हो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत गावे
0: जन्म मरे बह जोन प्रमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: मूरख अंधा अज्ञान।

0: नर्क स्वर्ग फिर फिर अवतार
1: अनक जतन कर आदम नहीं द्रवे
0: हर दर गह कहो कैसी गवे
1: कहो जो भला गावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सबकी रेंजा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब किसको सुख नाही कोए
1: जब हे जाने मैं कुछ करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बेरी मीत
0: तब लग निश्चल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: तब कृपा ते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे।

0: बहर अवतार अस्पति संत कै दुखन आर जा कटे
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटे
0: संत कै दुखन सुख सब जाए
1: संत कै दुखन नरक में पाए
0: संत कै दुखन मत हुए मलीन
1: संत कै दुखन सो बाते
0: संत के हते को रखे न कोई
1: संत कै दुखन थान पृष्ठ होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग नंदक भी तरे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संतन कै दुखन काग जो लवे
0: कै दुखन सर्प जोन पाए
1: संत कै दुखन त्रिग जोन करमाए
0: संतन कै दुखन तृष्णा में जले
1: संत कै दुखन सब को चले
0: संत कै दुखन ते सब जाए
1: संत कै दुखन नीच जाए
0: संत दुखी का था को नाहे
1: नानक संत पावे ताओ भी गत पाए
0: संत का निंदक महा अत ताई
1: संत का निंदक खिंडिक न पाई
0: संत का निंदक महा तियारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज
1: संत का

0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सदमितिया कहत
0: निंदक का तुर ही पया
1: नानक जो सुपावे सोई तिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
1: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइए
1: संत का दुखी नाम रेना जवाइये
0: संत के दुखी की पूजे नयासा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत का दुख न तृष्ट है कोई
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: कीर्तन मिटे कोई
1: नानक जाने सचा सोए
0: सब घट तिसके करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: रब की उस्तत करहु दिन रात
1: इसे त्यावो सास ग्रास
0: सब कछ वरते तिस

0: सूजन सदा अरोग।
1: यो मंदर गौतम मैं थम्मन,
0: यो गुरु का शब्द मन है अस्थम्मन।
1: यो पाखान नाव चढ़ कर
0: प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठर है।
1: यो अंधकार दीपक प्रकाश,
0: गुरु दर्शन देख मन हुए विगास।
1: यो महाउद्यान में मार्ग पावे,
0: यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे।
1: इन संतन की वाच तोर,
0: नानक की हर लोचा पूर।
1: मन मूर्ख का है बिल्लाई,
0: पूर्व लिखे का लिखिया पाई।
1: दुख सुख प्रभु देव
0: अवर त्याग तू तिसे चितार।
1: जो का

0: संत जना मिल करो विचारो
1: एक सिमर नाम आधार
0: अवर अपाप सब मीत विसार हो
1: करण कमल रित मैं पुरतारो
0: करण कारण सो प्रभ समरथ
1: कर कहो नाम।

0: क्यों बिसरै जे अग्न मह राखै
1: गुरु प्रसाद को बिरला लख
0: क्यों बिसरै जे बिकते काटै
1: जन्म जन्म का टूटा गांडा
0: गुरु पूरै तति है बुझाया
1: प्रभु अपना नानक जन त्याया
0: आजन संत करहु एहु काम
1: आन त्याग जपहु हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावहु
1: आप जपहु अवरा नाम जपावहु
0: भगत भाई तरिए संसार
1: बैन भगति तन हो सी
0: सर्व कल्याण सुख नित नाम।

0: है निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: बिन मैल कहो क्या तोता
0: है निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन को मान कौन अभमान
0: है स्वरूप केवल जगदीश
1: लगत कहो कीस
0: ज्योत स्वरूपी।

0: सेवा बन आई।
1: हुकम बूझ परम पद पाई,
0: ऐसे ऊपर नहीं विचार।
1: जाके मन बसिया निरंकार,
0: बंधन तोर पै निर्वैर।
1: दिन पूजे गुरु के पैर,
0: ए लोग सुखी है पर लोग सुहेले।
1: नानक हर प्रभु आपे मिले,
0: साध संग मिल करो बीच आनंद। साध संग मिल करो आनंद,
1: गावो प्रभु परमानंद।
0: राम नाम तत करो विचार,
1: लभ देह का करो उदार।
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
1: प्राण तरण का यह सुहाओ।
0: आठ पहर प्रापे खो नेरा,
1: मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा।
0: सुन उपदेश हृदय बसावो,
1: मन इच्छे नानक फल पावो।
0: हालत पालत धोए लेहो सवार,
1: राम नाम अंतर उतार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
1: मन बसे तिस साच परिखिया।
0: मान तन नाम जप हो ले बुलाए,
1: दर्द मन ते पाव जाए।
0: सच व्यापार करो व्यापारी,
1: दरगह निभह खेप तुम्हारी।
0: एका टेक रखो मन माहे,
1: नानक बहुर नया वह जाए।
0: जैसे दूर कहाँ को जाए,
1: उपरे रखन हार ते आए।
0: नर पाव जपा सगल पाव मिटे,
1: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे।
0: जत प्रभ रखा दस नाही दुख,
1: नाम जपत मन होवत।

0: दर्शन पेखत कुदरत श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप
0: दर्शन सुंदर हर रूप
1: दान सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुरख प्रदान
1: जस मन बसा सो होत निहाल
0: ताके नित नया।

0: राष्ट्रपति
1: संत संग अंतर प्रवडिठा
0: नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सगल समग्री एक कट माही
0: अनक रंग नाना दृष्टा है
1: नौ निदम मृत प्रभ का नाम
0: यही महेश का बस राम
1: समाद अनहत कहना
0: कह न जाई अचार्य बस

0: चतुर तत्व का बेता
1: एक दहटे
0: ये फल तिस जन के मुख भने
1: गुरु नानक नाम बचन मन सुने
0: निदान जप।

0: ना पाया किने तू सुन मन मेरिया
1: माया मोहनी जने एत भरम बुलाया
0: माया ता मोहनी तेने कीती चिंट गौली पाईया
1: मान किता दिसै जन मोह मिटा लाया
0: कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया
1: हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले
0: कम तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले
1: साथ तेरा चला नाही तस नाल क्यों जतलाइया
0: ऐसा काम मूले ना कीजे जित अंत पछोताई।

तेते अवगुण हमारे, दया करो किश मेहर उपावो, डूब दे पत्थर तारे, जीअड़ा अगन बराबर तपे, पीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुकम पछाण, सुख हुवै दिन राती।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पवन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी विस्माद तर

अवर काज तेरे किते ना काम, सीते गुजरान पर लालच बन गया, मोह बन गया। हुण मेरा नाम सब तो ज्यादा होवे, मेरा घर सब तो वड्डा होवे, हुण मेरी जय जयकार सब तो ज्यादा होवे। सीते गुजरान तन दियां लोड़ां, पर ऐसे कवि कोलों सिख्या मिलती है भाई जिन्हां ने गुरु के चरणों में थां बनाई ना, वो बाबे नानक दे घर विच सुनहरी इट बन के लग गए। जिवें भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई तारू सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने परिवार दियां खुशियां साडे ते लुटा दित्ती। किन्नू अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता। यह नगर कीर्तन, ये आसा की वार के कीर्तन, ये तेरा दरबार विच बैठिया प्रवान हो जाए, कबूल हो जाए, जे तू मेरा हो रहे। मंगना उदे कोल है पर पकड़ ना होवे, ए भी मेरा, ए भी मेरा, ए भी मेरा। पकड़ सानू परेशान करती है, पकड़ सानू कई जन्मां विच पटकांदी है, पकड़ सानू असली मनोरथ तो तोड़ देती। एक बहुत अमीर माया दा अंत नहीं, हंकार बड़ा है। एक मस्ताना जोगी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर बढ़ गया। एक फैमिली नाल खुशियां मनाउंदा है, इक्को दम खड़ा होके छाती ते हाथ मार के कहन लगा, तेनू पता नहीं घर विच किवें आईदा। क्रोध दे बोल बोलदा है, ईगो दे छाती ते हाथ मार के, गुरुद्वारा नहीं मेरा घर। जदों वार वार इन्हें बोलिया ना, यह गुरुद्वारा नहीं, सरा नहीं, यह मेरा घर है, यह मस्ताना फकीर इको दम कह लगा, मैनू माफ कर दे, तेरे दादा जी नू मिलवा दे। इंज लगता है जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनू झंझोड़न वास्ते भेजा। यह कह लगा, दादा जी तो चल बसे ने, कहिंदे दादी जी नू मिलवा दे, कहिंदे ओह भी चले गए, कहिंदे फिर फादर नू मिलवा दे, वह भी चल बसे, कहिंदे फिर मां नू मिलवा दे। हाथ जोड़ के ठंडा जा होके कहन लगा, कुछ महीने पहला मेरी मां भी चली गई। ये फकीर कहन लगा, हुण तू आपे दस, तेरा घर है कि सरां है? हुण तू आपे दस, तेरा घर है कि सरां है? जदों ये बोल बोले, फिर अंदरों आवाज आई भी मैनू जगाउण वास्ते महाराज ने किसी नू भेजिया है। महाराज मेर करन, कृपा करन, इस सारी दुनियादारी अपनी नहीं, अपना यही है जो तुसी गा रहे हो, महाराज के चरणों में हाजरी भर रहे हो। एक बारी गुरु का बन के ता वेख, फिर तिथे तू समर्थ, जिथे कोई ना है उथे तेरी रख, फुल चुक दी खमा। सब का धन्यवाद।

की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ। सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दे रख आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान सतगुरु निताणिया दे तान निओटिया दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख वाहेगुरु जीओ शब्द स्वरूप सतगुरु धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने महान बख्शिश मेहरामत कीती। सतगुरु जी आप जी दी कृपा सदका आप जी के हजूर सुंदर दीवान सजे सजे दरबार अंदर आप जी के अमृतमयी बाणी आसा की वार दे कीर्तन होए छे पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ होए। गरीब नवाज आप जी की अमृतमयी बाणी दे कीर्तन करदियां आप जी के पावन दरबार दियां सेवावां नूं निभाउंदे आप जी के दसरियां पासों बेअंत बेअंत सूक्ष्म भुल्लां होईयां सतगुरु जी अणजाण बच्चे समझ के मुआफ करना अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना चढ़दियां कला बख्शिश करनियां सतगुरु जी बेअंत संगतां ने अमृत वेले तो आप जी के पावन पवित्र चरण कमलां विच हाजरियां भरियां रहमतां करनियां समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दर ते प्रवान कर लैनियां सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइयां विच वाधे पाउणे घरां परिवारां विच सुख वरताउणी रहमतां करनियां सतगुरु जी बेअंत संगतां ने मीडिया दे माध्यम राहीं हाजरियां भरियां सेवावां भेजियां गुरमत अनुसार सभना दियां मनोकामना मनोभावना संपूर्ण करनियां समूह संगत वल्लों तन मन धन दे नाल कीती सेवा आप जी ने अपने दर ते प्रवान कर लैणी गुरमत अनुसार सभना दियां बेनतियां जोधड़ियां दर ते प्रवान करनियां सतगुरु जी कृपा करनी इस वक्त आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे जी कृपा करो गरीब नवाज
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਨਲ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

पर अंत ना जाप पारावार अंत कारण केते बिललाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोई बहुता कहिया

जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख से जो बोला इया हुआ सच होवे। धन धन सतगुरु ग्रंथ साहब जी, पहले प्रकाश नू मनारी परम सकार जो सत्संग जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन गतके वाले जिहड़े अपने कर्तव्य सब तो निपुण ने, गुरु कृपा करे सब नू चढ़दी कलां बख्शे जी। हुण एक सूचना हैगी आ कि बाहर फ्री क्लिनिक लगी हैगी है, जिस विच ब्लड प्रैशर, ब्लड शुगर काफ़ी कुछ चैक कर रहे हो, तो 2 बजे तक वो साढ़े है फ्री कर रहे, जिहड़े जिहड़े उस तों लाभ उठाउण चाहुण कर सकते ने। हो हुण मैं बेनती करा, सब तो पहले मैं जीवन आखदा सिंह साहब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी नूं कि वह अपने रिलेवे परिसर आके साडे पास पहुंचे ने समागम दे विच। सूचना बाकी मैं दिन नहीं देनी है। हुण नगर कीर्तन 1:45 हैगा, सो वह भी नोट कर लो। तो मैं सिंह साहब जी बेनती करा कि वह ठीक 12:05 तक कर लैन, तो थोड़ा समा दे सके। मैं चाहते हैं ते बाकी प्रोग्राम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु जी महाराज सतगुरु सामने सज गए, बाबा बुढ़ा साहब ने प्रकाश किया। सतगुरु कहिंदे लाओ फिर हुक्मनामा लाओ, ते पहला हुक्मनामा अज पहले प्रकाश दिहाड़े दे संबंध विच आपां नगर कीर्तन सजाउणा है। हरिमंदर साहब 1604 ईस्वी नूं जदों पहला हुक्मनामा आया, वो तुहानूं सारिआं नूं पता है, सूही महला पंजवां, सूही राग। क्योंकि जदों भी असी प्रकाश करदे आं, हरिमंदर साहब जिन्ने भी सिंह साहिबान इत्थों दे ग्रंथी साहब, ते मध भाग सोरठ राग हुंदा जां तनासरी हुंदा सूही, क्योंकि सतगुरु जी नूं इस तरह प्रकाश करके सुभायमान करना हुंदा है, ते सूही राग अंदर प्रकाश होया। सतगुरु दे बाबा बुढ़ा साहिब नूं आख्या हुक्म सुनावां,

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां नूं पंथ तो

0: जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: हुण हुक्मनामा लिया जाना जी, सारण बेनती है विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ गुरु की कृपा नाल।

0: गए मुसकत कार नानक ते मुख उजले केते छुटे नाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारक

गुर बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुकत ना पावे। सो कहो टल गुर सेवीऐ, अहनस सहज सो पाए,